0: हानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेक द डिफरेंस, फील द एनर्जी.
2: रेडियो धादिङ समय संकेत
3: अहिले साँझको 7 बज्यो.
4: शिवम सिमेन्ट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै सिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा.

0: California. Extreme energy drink.
1: Radio
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

0: Anima Reliance Life Insurance. Khule ra jiyo.
1: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।